इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हैं. उनमें से एक व्यक्ति बहुत सीधा सरल है, जिसके पास कोई भारी सामान नहीं है, वह बिल्कुल हल्का है. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने सोने चांदी के भारी गहने पहन रखे हैं और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भारी भारी सामान की पेटियां भी अपने साथ लाद रखी हैं. अब अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ जाता है और नाव डगमगाने लगती हैं. आप बताइए, उस तूफान में किसके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से जो हल्का है, वह आसानी से तैर कर बाहर निकल जाएगा. लेकिन जिसने भारी बोझ लाद रखा है, वह उस बोझ के वजन से पानी की गहराई तक डूब जाएगा. हम सब भी आज इसी जीवन रूपी नदी में अहंकार और झूठी शान का ऐसा ही एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं. कबीर साहब आज हमें इसी वजन को उतार फेंकने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हम इस संसार सागर में डूबने से बच सकें. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र. कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली. कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कबीर केवल राम कही

0: श्रोताओं, कबीर साहब हमें जीवन की परम कला सिखाते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम कहीं, तू संसार के सारे प्रपंचों और व्यर्थ के विवादों को छोड़कर एक नाम अर्थात राम का नाम सुमिरन कर, उस भीतरी परमात्मा से नाता शुद्ध गरीबी झाली और अपने शुद्ध गरीबी यानी सहज सरलता, निरहंकारिता और निष्कपट भाव को झाली यानी धारण कर लें। यहाँ गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, बल्कि मन का भोलापन और विनम्रता है, जहाँ कोई चालाकी और अहंकार नहीं होता। कबीर इसके विपरीत चलने वालों को चेतावनी देते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी, यह जो तुम संसार की कूड़ यानी झूठी और नकली बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा का चोगा पहनकर घूम रहे हो, यह तुम्हें एक दिन बुरी तरह ले डूबेगी। भारी पड़ सी काली, और जब काली यानी मृत्यु का समय आएगा, काल का थपेड़ा लगेगा, तब इस झूठे बड़प्पन का वजन तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ेगा कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि जन्म मरण के इसी चक्रव्यूह में डूब जाओगे। यह दोहा अकिंचन भाव यानी पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाने की साधना का दिग्दर्शन करता है। आध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा संसार में कुछ होने का भ्रम है, चाहे वह धन का अहंकार हो, जाति का हो या ज्ञान का हो। कबीर इस झूठे बड़प्पन को कूड़ यानी असत्य कहते हैं। जब मनुष्य इस असत्य को ओढ़ लेता है तो उसकी चेतना बहुत भारी और संकीर्ण हो जाती है। इसके विपरीत शुद्ध गरीबी आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है, जहाँ जीव स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तभी राम नाम का रस भीतर ठहर पाता है। कबीर समझा रहे हैं कि काल के थपेड़े केवल उसी को डुबा सकते हैं जिसके भीतर अहंकार का वजन है। जो पहले से ही हल्का है और विसर्जित है, वह इस भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम अपने कंधों पर किस बड़प्पन का बोझ लेकर घूम रहे हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो झूठे मुखौटे लगाते हैं, क्या वे हमारी भीतरी सुकून को नष्ट नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, काल की कसौटी पर केवल वही टिक पाएगा जो भीतर से बिल्कुल हल्का और साफ है। आज कोशिश कीजिए इस कूड़ बड़ाई यानी झूठी प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ने की। सीधे बनिए, सरल बनिए और अपने भीतर उस शुद्ध गरीबी यानी विनम्रता के भाव को जगाइए। अपनी चेतना को उस राम के सुमिरन में लीन कर दीजिए, जो आपको संसार के सारे बंधनों से आजाद करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली माणसं।
2: योर नॉलेज एंड साइंस इन्वॉल्व्ड इन मटेरियलिज्म, सीकिंग प्लीजर इन द आउटर कवर, कंपेलिंग फन प्लीजर मेरी मेकिंग, यू बिकेम अनबाउंड अनकंट्रोल्ड, tossed yourself all over the world, conceiving pleasure, merrymaking, enjoying fun and pleasure materialistically. You also said, the journey from birth to death is the truth. And you also said, life is in spirituality. The religion abused your material life and enforced rituals. You praise spiritual life for the pleasure of material life you made. Material life shallow, impatient, and there left the need to choose a spirituality. for the completion of samskara, you felt the need to undertake journey out of the union of conscious and science towards the goal point of culture. This basic invention appears simple but tedious in real. While facing that invention and research, rationalism is at the stake, and specific formulas of eternal bliss and contentment are not found. In the whole universe appears dark ray of eternal light. If to move forward with the support of its finger, there remain the feelings of tumbling in the darkness. And it is then precisely the role and desire to be able to touch the light that arises out of curiosity and rationality. Many men remain confused in the dark cave of illusion with the delusion of light. Sickness of situation shows they cannot come out, remain trapped in the dark cave of rituals and blind beliefs. Innumerable herds of men rot, innumerable generations crush due to ignorance, prude eunuch due to lack of knowledge. Therefore, the creation of humanity doesn't take place. Out of enlightened samskar may rise the culture. It would not be infected with inequality and discrimination. The specimen of man would emerge out of periphery of culture in a way that it would be shining sun of rites, and with the touch of conduct, the ritual light should be transmitted to countless generations of men. On the surface of planet, light clusters be tossed everywhere. Adultery, immorality, misdeeds, evils, sin, stigma would perish. In the lightful consciousness of rites, we want to find such a light. We want to check such a light. We want to see such a light. We want to experience such a light, live inside that light. Let new smoke break out again of speed and progress. Come on, let's seek out.
1: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
3: गीताई अध्याय दुसरा. आत्मज्ञान आणि समत्व बुद्धी किंवा सांख्य योग. संजय म्हणाला, असा तो करुणाग्रस्त घाबरा अश्रुगाळीत करीत असता खेद त्यास हे कृष्ण बोलिला. श्री भगवान म्हणाले, कोठोनी भलत्या वेळी सुचले पाप हे तुझ असे रुचे न थोरास याने दुष्कीर्ती दुर्गती. निर्वीर्य तू नको होऊ न शोभे हे मुळी तुझ भिकार दुबळी वृत्ती सोडूनी उठ तू कसा. अर्जुन म्हणाला, कसा रणांगणी झुंजू भीष्म द्रोणांविरुद्ध मी ह्यास बाण कसे मारू आम्हा हे पूजनीय की. न मारिता थोर गुरुस येथे भिक्षा हि मागुनी भले जगावे. हि तेच्छु हे ह्यास वधूनी भोग भोगू कसे भंगुर रक्त मिश्र. ह्यांचा चिभावा जय आमुचा की कशात कल्याण असे न जानो. मारुणी जानते जगनेन इच्छु झुंजावया तेची उभे समोर दैन्याने ती मारिली वृत्ती माझी धर्माचे तो नाशिले ज्ञान मोहे कैसे माझे श्रेय होईल सांगा पायान पाशी पातलो शिष्य भावे मिळेल निष्कंटक राज्य येथे लाभेल इंद्रासन देव लोकी शमेल त्यानेन तथापि शोक जो इंद्रियांते सुकवीत माझा। संजय म्हणाला असे अर्जुन तो वीर ऋषिकेशास बोलुनी शेवटी मीन झुंजेची ह्या शब्दे स्तब्ध राहिला मग त्यास ऋषिकेश जणो हसत बोलिला करीत असता शोक दोन्ही सैन्यात तो तसा। श्री भगवान म्हणाले करिसी भलता शोक वरी ज्ञान ही सांगसी मेल्या जित्या विषी शोक ज्ञानवंत न जानती मी तू आणिक हे राजे न मागे नवतो कधी तसेची सगळे आम्ही न पुढे ही नसू कधी या देही बाल्य तारुण्य जरावा लाभते जशी तसा लाभे नवा देह न डगे धीर तो तिथे शीतोष्ण विषय स्पर्श सुख दुःखात घालिती करी सहन तू सारे येती जाती अनित्यते ह्यांची मात्रा न चालेची ज्या धीर पुरुषावरी समदेखे सुखे दुःखे मोक्ष लाभास योग्यतो नसे मिथ्यास अस्तित्व नसे सत्यास नाशही निवाडा देखिला संती ह्या दोहींचा अशा परी जाने हे व्यापिले सर्व ते जान अविनाश तू नाश त्या नित्य तत्वाचा कोणीही न करू शके विनाशी देह हे सारे बोलिले त्यात शाश्वत नित्य निस्सीमतो आत्मा अर्जुना झुंज ह्यास्तव।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद देश विदेशों में घूमकर वहां के लोगों को भारत संबंधी ज्ञान बांट कर आए थे। उन्हें भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। इसी के साथ वे खुद भी विदेश से परिचित हुए थे। वहां के लोगों को आबोहवा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, लोकाचार, यहां तक के फैशन तक को जान लिया था। वे इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, सभी देशों के उद्भव तथा विकास के इतिहास से भी वे परिचित थे। विदेश से वापस आकर समय समय पर वे उनसे मिलने आने वालों से ये सभी बातें साझा करते थे। लोग भी विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होते थे।
1: आपने स्वामी जी द्वारा वर्णित पश्चिम और पूर्वी देशों में आहार, आचार विचार और लोकाचारों की बातें सुनी। अब हम पोशाक संबंधी उनकी धारणाएं सुनेंगे। उनका वर्णन करने का ढंग अत्यंत मनोहारी था। सभी विषयों को वे तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करते हैं।
2: अलग अलग देशों में कपड़े पहनने की अलग अलग प्रथा है और सभी देशों में पहनने ओढ़ने के ढंग के साथ कुछ न कुछ भद्रता का संपर्क अवश्य है। भले बुरे की पहचान भी अक्सर कपड़ों से ही की जाती है। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये बातें प्रचलित हैं। अब हमारे देश में भले आदमी नंगे बदन रास्ते में नहीं निकल सकते, भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में माथे पर बिना पगड़ी पहने कोई रास्ते में नहीं निकल सकता। यूरोप में दूसरे देशों की अपेक्षा फ्रांसीसी सब विषयों में आगे हैं। उनके भोजन आदि की सब नकल करते हैं। इस समय भी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में तरह तरह की पोशाकें मौजूद हैं, किंतु भले आदमी होने से ही या दो पैसा पास में होने से ही वो पोशाक गायब हो जाती है और फ्रांसीसी पोशाक का आविर्भाव हो जाता है।
0: उन्होंने यूरोप की पोशाकों का अच्छा खासा वर्णन किया है।
2: काबुली पैजामा पहनने वाले हॉलैंड के कृषक, घाघरा पहनने वाले ग्रीक, तिब्बती पोशाक पसंद करने वाले रूसी जो ही जेंटलमैन बने, त्यों ही उन्होंने फ्रांसीसी कोट पतलून धारण कर लिया। स्त्रियों की तो कुछ बात ही नहीं, पास में पैसा होते ही उन्हें तो पेरिस का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी इस समय धनी देश समझे जाते हैं। उन सभी देशों की पोशाक एक तरह की है, वो फ्रांस की नकल है। परंतु आजकल पेरिस की अपेक्षा लंदन के आदमियों की पोशाक अधिक अच्छी होती है। इसी से पुरुषों की पोशाक लंदन मेड और स्त्रियों की पोशाकें पेरिस मेड होती हैं। जिनके पास पैसा है वे इन दोनों स्थानों की बनी पोशाकें बारहों मास व्यवहार करती हैं। अमेरिका में विदेशों से आई पोशाकों पर बहुत ज्यादा चुंगी ली जाती है, किंतु उतनी अधिक चुंगी देकर भी पेरिस और लंदन की पोशाक ही पहननी पड़ती है। ये काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस समय अमेरिका में कुबेर का प्रधान अड्डा जो है।
1: अब सुनिए प्राचीन भारतीय पहनावे की बात।
2: प्राचीन आर्य लोग धोती चादर पहनते थे। लड़ाई के समय क्षत्रियों में पायजामा और अंगा पहनने का चलन था, बाकी समय सभी धोती चादर, किंतु पगड़ी सभी पहनते थे। बहुत प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं। इस समय बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में केवल लंगोटी से ही शरीर को ढकने का काम चल जाता है, किंतु पगड़ी का पहनना अत्यावश्यक है। बौद्ध कालीन जो पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं उनमें स्त्रियां भी केवल लंगोटी ही पहने रहती हैं। बुद्ध के पिताजी लंगोटी लगाकर सिंहासन पर बैठे हैं, उसी प्रकार उनकी मां भी बैठी हैं। विशेषता केवल यही है कि पैर भर में पैजनी और हाथ भर में कड़ा है, पर पगड़ी जरूर है। धर्म सम्राट अशोक धोती पहन और गले में दुपट्टा डाल नंगे बदन एक डमरू के आकार वाले सिंहासन पर बैठकर नाच देखते थे। कमर से कितने ही चिथड़े लटकते थे फिर भी पगड़ी थी। जो कुछ होता था सब पगड़ी में, किंतु राज सामंत लोग चुस्त पायजामा और लंबी अचकन पहनते थे। सारथी नलराज ने इस प्रकार रथ चलाया कि राजा ऋतुपर्ण की चादर न जाने कहां उड़ गई और राजा ऋतुपर्ण नंगे बदन ही विवाह करने गए। धोती चादर आर्य लोगों की पुरानी पोशाक थी, इसलिए क्रिया कर्म के समय धोती चादर पहननी पड़ती है।
0: अब वे प्राचीन रोमन और ग्रीक पोशाकों का वर्णन करते हैं।
2: प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों की पोशाक थी धोती चादर। वहां एक प्रधान कपड़ा जो धोती और चादर दोनों का काम देता था तोगा कहलाता था। उसी का अपभ्रंश आज चोगा है, किंतु कभी कभी एक अंगा भी पहनते थे। लड़ाई के समय लोग पायजामा और अचकन पहनते थे। स्त्रियों का एक खूब लंबा चौड़ा चौकोर कपड़ा रहता था जो दो चादरों की लंबाई के बल सीकर और चौड़ाई की ओर खुला छोड़कर बनता था। उसके बीच में से दो बार बांधते हैं, एक बार छाती के नीचे और दूसरी बार पेट के नीचे। इसके बाद ऊपर खुले हुए उस कपड़े के दोनों सिरों को कंधों पर दो जगह बड़ी आलपिनों से अटका लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी कंबल पहनते हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर और सहज है। ऊपर एक चादर रहती है।
1: अब आता है सिले हुए कपड़ों का युग।
2: प्राचीन काल में केवल ईरानी ही काटकर बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे। जान पड़ता है शायद इसे उन लोगों ने चीनियों से सीखा था। चीनी लोग सभ्यता अर्थात भोग विलास सुख स्वच्छंदता के आदि गुरु हैं। अनादिकाल से चीनी टेबल पर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, खाने के लिए कितने यंत्र तंत्र रखते हैं, कई प्रकार की सिली पोशाकें पहनते हैं जिनमें पायजामा टोपी और टोप आदि होते हैं।
0: स्वामी जी से हमें पता चलता है ये पोशाकें कैसे एक देश से चलकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। फिर जलवायु के साथ पोशाक का संबंध भी उन्होंने बखूबी समझाया।
2: सिकंदर शाह ने ईरान को जीता। उन्होंने धोती चादर छोड़कर पायजामा पहनना आरंभ कर दिया। इससे उनकी स्वदेशी सेना इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह जैसा हो गया, किंतु सिकंदर ने कुछ परवाह न कर पायजामों का प्रचार कर ही दिया। गर्म देशों में कपड़े की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, लंगोटी से ही लज्जा निवारण हो जाती है, बाकी सब तो शोभा मात्र हैं। ठंडे देशों में सदा लोग शीत से पीड़ित होकर अस्थिर रहते हैं। असभ्य अवस्था में वे जानवरों की खाल पहना करते थे, क्रमशः कंबल पहनने लगे और फिर कपड़ों की बारी आई। वे कई प्रकार के होने लगे। इसके बाद नंगे बदन गहना पहनने से ठंड के कारण मृत्यु तो हो सकती थी, इसलिए यह अलंकार प्रियता कपड़ों में जा छिपी। जिस प्रकार हमारे देश में गहनों का फैशन बदलता है, उसी प्रकार इन लोगों के कपड़ों का फैशन भी घड़ी घड़ी बदलता रहता है।
1: प्राच्य और पाश्चात्य में सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, पहनने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वामी जी ने कहा,
2: इसलिए ठंडे देशों में बिना सर्वांग कपड़े से ढके किसी के सामने निकलना असभ्यता है। खासकर विलायत में ठीक ठीक पोशाक पहने बिना घर के बाहर जाया ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों का पांव दिखाई पड़ना लज्जा की बात है, किंतु गला और वक्ष का कुछ हिस्सा भले ही खुला रह जाए। हमारे देश में मुंह दिखाना बड़ी लज्जा की बात है, किंतु घूंघट काढ़ने में साड़ी चाहे पीठ से हट जाए तो कुछ हर्ज नहीं। राजपूताना और हिमालय की स्त्रियां मुंह ढाके रहती हैं, चाहे पेट और पीठ भले ही दिख जाए।
0: अब चीनियों के बारे में एक मजेदार कहानी।
2: एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इस लज्जा के संबंध में बड़े अद्भुत उदाहरण देखने में आते हैं। किसी किसी विषय में बहुत ज्यादा लज्जा की जाती है, पर उसकी अपेक्षा अधिक लज्जा वाले विषयों में नाम मात्र की भी लज्जा नहीं की जाती। चीन में स्त्री पुरुष सभी सदा सिर से पैर तक ढके रहते हैं। वहां बौद्ध मतावलंबी नीति में बड़े कुशल हैं। खराब बातें या चाल चलन होने से फौरन सजा दी जाती है। ईसाई पादरियों ने वहां जाकर चीनी भाषा में बाइबल छपवा डाला। उनको पढ़कर चीनी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने चीन में बाइबल के प्रचार को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, ये किसी तरह भी यहां नहीं चलाई जा सकती। इसके ऊपर ईसाई पादरी स्त्रियों का सायंकालीन पोशाक पहनना और भी आपत्तिजनक था। साधारण बुद्धि वाले चीन निवासियों ने कहा, सर्वनाश, इस पुस्तक को पढ़कर हमारे लड़के खराब हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए चीनियों को ईसाइयों पर बहुत क्रोध आ गया। नहीं तो चीनी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करते। सुनते हैं कि पादरियों ने फिर बाइबल छपवाया है, किंतु इससे चीनी लोगों को और भी संदेह हो गया। फिर पाश्चात्य देशों के विभिन्न प्रदेशों में लज्जा, घृणा आदि के विभिन्न प्रकार हैं। अंग्रेजों और अमेरिका वालों के लिए वे एक प्रकार के हैं, फ्रांसीसियों के लिए वे एक दूसरी तरह के, और जर्मनी लोगों के लिए वे तीसरी तरह के हैं। रूसी और तिब्बती लोगों की बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, किंतु तुर्कों का अपना ही रस्म रिवाज है।

0: स्वामी जी हमेशा स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। माँ के प्रति उनकी श्रद्धा सभी को मालूम है। वे शक्ति के उपासक भी थे और ईश्वर उनके लिए मातृ रूप में शक्ति ही थी।
1: वे जब यूरोप गए और वहाँ के लोगों को माँ यानी मदर मेरी की पूजा और भक्ति करते देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पूजा पद्धति के साथ हमारी शक्ति पूजा की तुलना भी की है।
2: यूरोप में प्रोटेस्टेंट तो नगण्य है, धर्म तो कैथलिकों का ही है। उस धर्म में जिहोवा, ईसु और त्रिमूर्ति आदि भी दब गए हैं। सबका आसन माँ ने ग्रहण किया है, ईसु को गोद में लिए माँ। लाखों स्थानों में, लाखों किस्म से, लाखों रुपयों में, बड़े मकानों में, मंदिरों में, सड़कों में, फूस की झोपड़ी में, सब कहीं बस माँ की ही ध्वनि है। बादशाह माँ पुकारता है, सेनापति माँ पुकारता है, हाथ में झंडा लिए सैनिक पुकारता है माँ, जहाज पर मल्लाह पुकारता है माँ, रास्ते के कोने में पड़ा हुआ भिखारी पुकारता है माँ, धन्य मेरी, धन्य मेरी, धन्य मेरी। दिन रात यही ध्वनि उठती है।
0: हम भी शक्ति पूजा करते हैं, पर स्वामी जी ने देखा पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हम सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, घर की देवियों को सम्मान नहीं देते।
2: इसके बाद स्त्री पूजा है। ये शक्ति पूजा केवल काम वासनामय नहीं है, ये शक्ति पूजा कुमारी सधवा पूजा है। जैसी हमारे देश में काशी, कालीघाट आदि तीर्थ स्थानों में होती है, ये काल्पनिक नहीं वास्तविक शक्ति पूजा है। किंतु हम लोगों की पूजा इन तीर्थ स्थानों में ही होती है और केवल क्षण भर के लिए, पर इन लोगों की पूजा दिन रात बारह महीने चलती है। पहले स्त्रियों का आसन होता है, कपड़ा, गहना, भोजन, उच्च स्थान, आदर और खातिर पहले स्त्रियों की। उच्च कुल की और रूपवती युवतियों की तो बात ही क्या है। ये शक्ति पूजा प्रत्येक स्त्री की पूजा है, चाहे परिचित हो या अपरिचित। इस शक्ति पूजा को पहले पहल यूरोप में मूर लोगों ने आरंभ किया था। मूर मुसलमान और अरब जाति के मिश्रित हैं। जिस समय उन लोगों ने स्पेन को जीता था, उस समय उन्होंने 8 शताब्दियों तक राज्य किया था। उसी समय यह शक्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय सभ्यता का उन्मेष हुआ और शक्ति पूजा का आविर्भाव। कुछ समय के अनंतर मूर लोग इस शक्ति पूजा को भूल गए, इसलिए वे शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। वे स्थान च्युत होकर अफ्रीका के एक कोने में असभ्यावस्था में रहने लगे और उस शक्ति का संचार हुआ यूरोप में। मुसलमानों को छोड़कर मां ईसाइयों के घर जा विराजी।

0: विनोबा की माँ। विनिया की स्मृति में बसी माँ, विनिया की माँ रखुमाई, देखने में सुंदर थी। गोरा वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुघड़ शरीर, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वे चतुर थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनमें भक्ति और वैराग्य की भावना भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गहने तो बहुत पहनती ही नहीं थी, कपड़ों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं रखती थी। रोज बड़े तड़के उठकर चक्की पीसती और संतों के पद अभंग गुनगुनाया करती। भक्ति के भजन गाने में वे इतनी तन्मय हो जाती थी कि कभी कभी तो दाल सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती या दोबारा डाल देती। ईश्वर पर अडिग श्रद्धा, कर्तव्य परायणता, प्रभु भक्ति के साथ साथ संसार के प्रति जल कमलवत, अनासक्ति, ये उनके मुख्य गुण थे। विनोबा का जीवन बनाने में माँ की बड़ी महत्वपूर्ण देन है। विनोबा की आंखों में से आज भी माँ की याद आते ही आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे आंसू नहीं है, वे है माँ के चरणों में उसके अनंत उपकारों का अभिवादन। माँ के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: मुझ पर जो संस्कार हैं वो माँ के हैं, जिसके लिए दूसरी उपमा नहीं है। मुझे अनुभव से भरे बहुत से ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं और सत्संगति भी प्राप्त हुई है। उन सबको तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में मुझे जो ये साक्षात भक्ति की शिक्षा मिली, उस दर्शन को रखकर तौलता हूँ तो दर्शन का वजन बाकी सब चीज़ों से बढ़ जाता है। मैं माँ का बेटा हूँ। होते हैं कुछ बच्चे माँ के, कुछ पिता के, कुछ दादा के, वैसे ही मैं माँ का। यही मेरी सही पहचान है, अर्थात मेरे जीवन पर माँ का जितना परिणाम हुआ है उतना किसी और का नहीं। उसने लगाई हुई आदतें, उसने दिखाई हुई दिशा, उसने बताई हुई बातें, इन सब का इतना उपयोग होता है उतना किसी भी बात का नहीं होता। स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी वैसा ही बना। मैं हमेशा स्त्रियों को मात्र दृष्टि से ही देखता आया हूँ। गीता का अनुवाद मैंने किया और उसे गीताई नाम दिया। संसार में कहीं भी आश्रय अगर ना भी मिले, परंतु माँ के आंचल में आश्रय सदैव ही मिलता है। माँ परम भक्त थी। घर के सभी लोगों को खिला पिलाकर, घर के सब कामों को निपटाकर, स्वयं कुछ ना खाते हुए भगवान के सामने बैठकर उनकी विधिवत पूजा करती थी। और पूजा समाप्त होने पर जब वो भगवान को प्रणाम करती थी तब उसके भक्त हृदय के दर्शन होते थे। प्रणाम करने के बाद अपने दोनों कान पकड़कर कहती थी,
2: हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे अपराध क्षमा कर।

0: ऐसा कहते कहते आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। इस पर विनोबा कहते हैं,
1: मन उसका ईश्वर से सीधा संबंध हो, रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी जैसे विशेष दिन हमारे भी आंखों से आंसू आते थे। वो विशेष दिन होता है, वातावरण श्रद्धा भाव वाला हो जाता है, मूर्ति सामने होती है, उसे देखकर अश्रुधारा का बहना स्वाभाविक है। किंतु हर दिन की पूजा में इस प्रकार अश्रुओं का बहना मैंने देखा है और ये भक्ति के अलावा संभव ही नहीं हो सकता। मां रात को सबके बाद सोती और तड़के भोर के समय सबसे पहले जागती थी। बड़े तड़के चक्की पर आटा पीसते हुए मधुर भजनों को गाती थी। हम बच्चों को उसके कारण कितना ज्ञान मिला वो याद कर आंखें आज भर जाती हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये तीनों इस तड़के की पिसाई में एक रूप हो जाते थे। माँ के वे भोर के आटा पिसाई के वक्त गाए भजन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: विनोबा जी की मां सर्वसामान्य संस्कार कार्य में लीन थी। दिन भर काम करती, उनका सारा ध्यान ईश्वर भाव से भरा रहता था। वो सांसारिक थी, परंतु उसके हृदय में, उसके वाणी में कभी सांसारिक बातें नहीं थी। उनके मुख से भी कटु शब्द सुना नहीं। सवेरे उठने के साथ ही उनका ईश्वर नाम स्मरण शुरू होता था। आटा पीसने बैठती तो ईश्वर का भजन गाती। जो भजन गाती वे सब ईश्वर के होते और वे उतने ही प्रेम और तन्मय भक्ति से गाती थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर थी। उसकी विशेषता ये थी कि वे बहुत तन्मयता से गाती थी। विनोबा जी ने एक दिन माँ से कहा,
1: माँ रोज नया भजन गाओ, कल का आज नहीं, आज का कल नहीं। ये कार्यक्रम तकरीबन 6 महीने चला और माँ ने रोज नया भजन सुनाया। इतने भजन उसे मौके की याद थे। वो कर्नाटक की थी, उनका मायका कर्नाटक का था, इसकी वजह से उन्हें कन्नड़ कर्नाटकी भजन भी आते थे। पुरंदर दास का भजन वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी, जिसका अर्थ था, मुझे भी कसम है भगवान, तुझे भी कसम है और हम दोनों भक्तों की कसम है, तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाऊं तो मुझे कसम, और अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हें कसम। उनका दूसरा मराठी भजन भी मुझे खूब याद है।
0: विनोबा जी की माँ स्नान, रसोई इत्यादि काम जब करती थी तो वो भजन गुनगुनाते हुए कामों में तल्लीन हो जाया करती थी। परिणाम ये कि वो या तो रसोई में नमक डालना भूल जाती या कभी कभी रसोई में 2 बार नमक डाल देती। वे सबको खिलाकर अंत में भगवान की पूजा करके भोजन करती थी और विनोबा जी सबसे पहले भोजन किया करते थे, परंतु भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं रहता था। जो थाली में परोसा, जो सामने आया उसे खाते थे और निकल जाते थे। उन्हें नमक का कम या अधिक होना पता ही नहीं चलता था। जब पिताजी भोजन को बैठते तो तुरंत कहते,
2: अरे कितना ज्यादा नमक डाल दिया है।
3: ठीक ही होगा, विनय तो भोजन करके गया, कुछ बोला नहीं।
2: अरे तेरे विनय को कुछ विज्ञान मालूम ही नहीं।
1: माँ शाम को जब मुझसे पूछती सब्जी में नमक ज्यादा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैं सीधा बोल देता, आप ही क्यों नहीं चख लेती पहले, थोड़ा सा चखना चाहिए ना।
0: परंतु भगवान की पूजा करने से पहले खाना उन्हें पसंद नहीं था। माँ पिता का बहुत आदर करती थी, परंतु विनोबा जी को वो विशेष मानती थी। एक बार माँ ने चावल के 1 लाख दाने ईश्वर को समर्पित करने का संकल्प किया। रोज चावल गिनने का कार्यक्रम चला। भगवान के चरणों में अक्षत चावल ही चढ़ा सकते हैं, इसीलिए खंडित चावल को अलग करते जाना ये उनका नित्य क्रम बन गया। पिता थे वैज्ञानिक, माँ को रोज ये चावल गिनने का कार्यक्रम करते देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा,
2: अरे यह तुम क्या एक एक दाना गिनती हो, 1 तोला चावल तोल कर उसमें कितने चावल है यह गिन लो और फिर हिसाब करके 1 लाख चावल कर लो तो बस है। उसमें 1/2 तोला चावल अधिक डाल देना ताकि कम पड़ने का डर ही न रहे, थोड़ा ज्यादा रहे तो ठीक ही है।
0: माँ पिताजी को जवाब नहीं दे पाई, परंतु उनकी बात से वो सहमत नहीं हो सकी। विनू जब बाहर से लौटा तब माँ ने उससे पूछा,
3: विनया यह 1 लाख चावल गिन गिन कर अर्पण करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तो बता।
4: मैं कहता था,
1: तुम जो एक एक दाना गिनकर ईश्वर को चढ़ाती हो वो गणित का काम नहीं, वो तो भक्ति है। दाने गिनते समय ईश्वर चरणों में जो तद्रूपता सधती है, भगवान का जो स्मरण होता है, उसी का तो महत्व है। तराजू में तौल लेने से ये चीज थोड़े ही सधने वाली है।
0: माँ का समाधान हो गया। उस रात पिताजी को भी निरुत्तर कर देने वाला जवाब मिल गया। अपनी ओर से 100% पुरुषार्थ और भक्ति की अखंड धारा बहाते हुए भी आखिरी विश्वास माँ का ईश्वर की चाह पर था। माँ रोज रात को दूध में जोरन डालते समय परमेश्वर का नाम लेती। एक बार विनोबा ने पूछा,
1: माँ दही जमाने में भी भगवान लाने की क्या जरूरत है।
3: बेटा हमने अपनी ओर से भले पूरी तैयारी कर ली हो, फिर भी दही तो तभी जमेगा जब भगवान की कृपा होगी, इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ।
0: मनुष्य का यत्न और ईश्वर की कृपा। नागपंचमी का दिन आता, मां विनया को नाग देवता का चित्र बनाने के लिए कहती। विनु कुमकुम का नाग बना देता, परंतु वो उतना अच्छा न बन पाता। तो विनु कहता,
1: मां बाजार में सुंदर चित्र मिलता है।
3: सुंदर हो तो भी वह निकम्मा है, वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपने बेटे के हाथ से खींचा हुआ चित्र चाहिए।
0: उस माँ का विनोबा पर बहुत बड़ा उपकार है, जिसने उन्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, रात रात भर जागकर बीमारी में शुश्रूषा की, किंतु मानव आचार धर्म की शिक्षा देकर सबसे बड़ा उपकार किया। इस संदर्भ में विनोबा जी बताते हैं,
1: माँ ने बचपन में मुझसे तुलसी को जल चढ़ाने का नियम करवा लिया था। एक बार जब मैं नहाकर खाना खाने बैठा तो माँ ने सवाल किया, तुलसी को जल चढ़ाया? मैंने कहा नहीं। तुरंत बोली, पहले जल चढ़ा कर आओ, फिर तुम्हें खाना देती हूँ।
0: गागोदे के घर के आंगन में कटहल का एक पेड़ था। हरे भरे पेड़ की पत्तियों में जब से फूल बैठने लगे थे, तभी से घर के बच्चे मीठे फल खाने के स्वप्न देखना शुरू करते थे। जब शाखाओं पर छोटे छोटे फल दिखने लग जाते, तब से ही सब फल पकने की राह देखते रहते। रोज माँ से पूछते कि क्या अब ये फल उतारने लायक हो गया है। यो कहते कहते वह दिन आ जाता जब फल उतारने लायक हो जाता। जब उसके फल तैयार हो जाते तो विनया सहित सब बच्चे अत्यंत उत्साहित होकर इकट्ठे हो जाते। कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई हाथ फैलाकर खड़ा रहता, कोई घर में थाली और चाकू लाने दौड़ता। इस तरह बच्चों की दुनिया में हलचल मच जाती। बड़े उत्साह के साथ फल उतारा जाता। सब बच्चों को इर्द गिर्द बैठा कर फल काटा जाता था और फिर सब में बांटे जाने का क्षण आते ही सबके मुंह में पानी भर आता था। इतने में माँ अंदर से प्रकट हो जाती थी। वे कहती थी,
3: ठहरो बच्चों, यह फल इस तरह खाया नहीं जाता, क्योंकि इस ऋतु का यह पहला फल है, इसे बांटना होता है, बचे तो खा सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग देव बनना पसंद करोगे कि राक्षस?
4: कैसा बेतू का सवाल है अम्मा का, भला राक्षस बनना कौन पसंद करेगा? निसंशय हम देव बनेंगे।
5: हम देव बनेंगे।
3: तो तुम जानते हो देव कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं?
5: जो स्वर्ग में रहते हैं वे देव, जो नर्क में रहते हैं वे राक्षस।
3: नहीं नहीं, देव और राक्षस यही इसी पृथ्वी पर होते हैं। मानव से ये दोनों बनते हैं। जो देता है वह देव बनता है और जो रखता है वह राक्षस बनता है। बोलो बच्चों, तुम क्या बनोगे, देव या राक्षस?
5: हम देव बनेंगे, देव बनेंगे, देव बनेंगे।
3: तब फिर यह फल सबको देकर खाओगे ना?
5: जरूर जरूर।
0: और फिर एक एक टुकड़ा लेकर बच्चे पड़ोस में बांटने निकल पड़ते। खुश होकर सब में बांटते हुए कहते, लीजिए ये हमारे कटहल के पहले फल का प्रसाद। और फिर सब लोगों में बांटकर जो कुछ थोड़े इने गिने टुकड़े बच जाते, उसे भाई बहन आपस में बांट लेते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में चबाते हुए बच्चों की कोमल आंखों में देवत्व की नई झलक दिखाई पड़ती। बांट कर खाओ, माँ के इस सूत्र संस्कार ने पुत्र के जीवन में एक नई जान भर दी। अपने पड़ोस में कभी कोई स्त्री बीमार पड़ती तो माँ सेवा के लिए दौड़ जाती। कभी आवश्यकता हुई तो अपने घर का खाना पकाकर उसके घर जाकर खाना पका आती। ये देखकर छोटे से विनायक को अचरज लगता। वो माँ से पूछ बैठता था,
1: माँ तुम बड़ी स्वार्थी दिखती हो, अपने घर की रसोई पहले बनाती हो फिर पड़ोसी की, ऐसा क्यों, इतना स्वार्थ क्यों?
3: विनया तू तो बड़ा मूर्ख है रे, यदि उनकी रसोई पहले बना लो तो उनको फिर ठंडा ही खाना पड़ेगा। पहले अपनी बनाकर फिर उनकी बनाओ तो उनको गरम गरम खाना मिलेगा। यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है।
0: बचपन में विनु को भूत का बहुत डर लगता था। माँ विनया को समझाती थी कि ये भूत वूत कोरी कल्पना है, परमेश्वर के भक्तों को भूत कभी नहीं सताता। राम नाम जपो, सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। माँ ने इतना कहा तो विनया का डर भाग गया। माँ ने कहा था कि अगर भूत दिखे तो प्रभु का नाम लो और लालटेन लेकर देखो। माँ पर श्रद्धा थी तो वो डर भाग गया। एक दिन की कहानी विनोबा खुद सुनाते हुए कहते हैं,
1: एक बार रात को हम अपनी कोठरी में टहल रहे थे, एक बाजू दिया था तो दीवार पर अपनी ही बड़ी बड़ी छाया दिखती थी। मैं घबरा गया, इतना बड़ा आदमी खड़ा है, इतना लंबा आदमी कभी देखा नहीं। तुरंत दौड़कर माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरा गुलाम है, तू जैसी आज्ञा करेगा वैसा उसे करना होगा, तू बैठेगा तो वो बैठेगा, तू खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा। मैंने सोचा कि देखूं सही है क्या, तब मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया, मैं खड़ा रहा, वो भी खड़ा हो गया, मैं चलने लगा, वो भी चलने लगा, मैं लेट गया, वो भी लेट गया। फिर मेरे ध्यान में आया, ये तो अपना गुलाम है। इस तरह से मेरा भूत का डर माँ की श्रद्धा से गया और छाया का डर माँ ने बुद्धि से निकाला।
0: दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाला विनोबा जी के दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक मोटा तगड़ा भिखारी भीख मांगने आया। विनोबा की माँ उसे भिक्षा देने लगी तो विनोबा जी ने माँ से कहा,
1: माँ ये तो मोटा तगड़ा आदमी दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे लोगों को भीख देते रहे तो देश में आलस बढ़ जाएगा। अपात्र को दान दिया गया तो दान देने वाले का भी अकल्याण होता है।
3: विनया, पात्र अपात्र की परीक्षा करने वाले हम कौन? दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप मानकर अपनी हैसियत के अनुसार उसे देते रहना, इतना ही हमारा काम है। उसकी परीक्षा लेने वाली मैं कौन?
0: पिताजी का स्वभाव था कि वे किसी न किसी जरूरतमंद को अपने घर पर रखते थे। उन दिनों एक गरीब विद्यार्थी उनके घर पर रहता था। घर में कभी कुछ ठंडा खाना बच जाए तो माँ खुद खा लेती थी, या ज्यादा हो तो अपने विनया को देती थी। उस विद्यार्थी को तो वो हमेशा ताजी रोटी परोसती थी, कभी बासी नहीं खिलाती थी। विनया ये तमाशा रोज देखता था। एक दिन उन्होंने माँ से मजाक में पूछा,
1: माँ तू तो हमें कहती है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु तेरा भेदभाव अभी तक गया नहीं। देख उस लड़के को तू ठंडा खाना कभी नहीं परोसती और मुझे परोसती रहती है, इतना फर्क तो तू भी करती है ना?
3: बात सही है बेटा, अभी मुझसे तेरे में और दूसरे में भेद हो जाता है। यह मुझ में तेरी आसक्ति है, मेरे हृदय में तेरे लिए पक्षपात है। तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है जबकि वह लड़का मुझे भगवत स्वरूप दिखे, परंतु आसक्ति के कारण तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है। जिस दिन भी तू मुझे भगवत स्वरूप दिख पड़ेगा उस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा बेटा।
0: महान पुत्र की महान माता का भेदभाव भी कैसा भव्य है। पुत्र के प्रति पुत्र भावना, पर के प्रति भगवत भावना। इसका एक और उदाहरण देते हुए विनोबा जी कहते हैं,
1: एक बार मेरे हाथ में डंडा था और मैं उस डंडे से सामने वाले खंभे को मार रहा था। माँ ने मुझे रोका और बोली, किस लिए उसे मार रहे हो, खंभे में भी ईश्वर का वास होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। मैंने अपना हाथ रोका, खंभे को बिना वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये तो भावना है, ये यहाँ की हवा में समाई है। सभी वस्तुओं की ओर भगवत भावना से देखना, यह शिक्षा बचपन में माँ से मिली।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हर्ट टच.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हैं. उनमें से एक व्यक्ति बहुत सीधा सरल है, जिसके पास कोई भारी सामान नहीं है, वह बिल्कुल हल्का है. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने सोने चांदी के भारी गहने पहन रखे हैं और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भारी भारी सामान की पेटियां भी अपने साथ लाद रखी हैं. अब अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ जाता है और नाव डगमगाने लगती हैं. आप बताइए, उस तूफान में किसके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से जो हल्का है, वह आसानी से तैर कर बाहर निकल जाएगा. लेकिन जिसने भारी बोझ लाद रखा है, वह उस बोझ के वजन से पानी की गहराई तक डूब जाएगा. हम सब भी आज इसी जीवन रूपी नदी में अहंकार और झूठी शान का ऐसा ही एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं. कबीर साहब आज हमें इसी वजन को उतार फेंकने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हम इस संसार सागर में डूबने से बच सकें. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र. कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली. कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कबीर केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली. रे साधो, भारी पड़सी काली. श्रोताओं, कबीर साहब हमें जीवन की परम कला सिखाते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम कही, तू संसार के सारे प्रपंचों और व्यर्थ के विवादों को छोड़कर एक नाम अर्थात राम का नाम सुमिरन कर, उस भीतरी परमात्मा से नाता, शुद्ध गरीबी छाली और अपने शुद्ध गरीबी यानी सहज सरलता, निरहंकारिता और निष्कपट भाव को झाली यानी धारण कर लें. यहाँ गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, बल्कि मन का भोलापन और विनम्रता है, जहाँ कोई चालाकी और अहंकार नहीं होता. कबीर इसके विपरीत चलने वालों को चेतावनी देते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी. यह जो तुम संसार के कूड़ यानी झूठी और नकली बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा का चोगा पहनकर घूम रहे हो, यह तुम्हें एक दिन बुरी तरह ले डूबेगी. भारी पड़सी काली, और जब काली यानी मृत्यु का समय आएगा, काल का थपेड़ा लगेगा, तब इस झूठे बड़प्पन का वजन तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ेगा कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि जन्म मरण के इसी चक्रव्यूह में डूब जाओगे. यह दोहा अकिंचन भाव यानी पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाने की साधना का दिग्दर्शन करता है. अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा संसार में कुछ होने का भ्रम है, चाहे वह धन का अहंकार हो, जाति का हो या ज्ञान का हो. कबीर इस झूठे बड़प्पन को कूड़ यानी असत्य कहते हैं. जब मनुष्य इस असत्य को ओढ़ लेता है, तो उसकी चेतना बहुत भारी और संकीर्ण हो जाती है. इसके विपरीत शुद्ध गरीबी आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है, जहाँ जीव स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है. जब अहंकार विलीन हो जाता है, तभी राम नाम का रस भीतर ठहर पाता है. कबीर समझा रहे हैं कि काल के थपेड़े केवल उसी को डुबा सकते हैं जिसके भीतर अहंकार का वजन है. जो पहले से ही हल्का है और विसर्जित है, वह इस भवसागर को सहज ही पार कर जाता है. आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम अपने कंधों पर किस बड़प्पन का बोझ लेकर घूम रहे हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो झूठे मुखौटे लगाते हैं, क्या वे हमारे भीतरी सुकून को नष्ट नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, काल की कसौटी पर केवल वही टिक पाएगा जो भीतर से बिल्कुल हल्का और साफ है। आज कोशिश कीजिए इस कुल बड़ाई यानी झूठी प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ने की। सीधे बनिए, सरल बनिए और अपने भीतर उस शुद्ध गरीबी यानी विनम्रता के भाव को जगाइए। अपनी चेतना को उस राम के सुमिरन में लीन कर दीजिए जो आपको संसार के सारे बंधनों से आजाद करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
2: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
3: Your knowledge and science involved in materialism, seeking pleasure in the outer cover, compelling fun, pleasure, merrymaking. You became unbound, uncontrolled, tossed yourself all over the world, conceiving pleasure, merrymaking, enjoying fun and pleasure materialistically. You also said the journey from birth to death is the truth. And you also said life is in spirituality. The religion abused your material life and enforced rituals. You praise spiritual life for the pleasure of material life. You made material life shallow, impatient, and there left the need to choose a spirituality. For the completion of samskara, you felt the need to undertake journey out of the union of conscious and science towards the goal point of culture. This basic invention appears simple but tedious in real. While facing that invention and research, rationalism is at the stake, and specific formulas of eternal bliss and contentment are not found. In the whole universe appears dark ray of eternal light. If to move forward with the support of its finger, there remain the feelings of tumbling in the darkness. And it is then precisely the role and desire to be able to touch the light that arises out of curiosity and rationality. Many men remain confused in the dark cave of illusion with the delusion of light. Sickness of situation shows they cannot come out, remain trapped in the dark cave of rituals and blind beliefs. Innumerable herds of men rot, innumerable generations crush due to ignorance, proved eunuch due to lack of knowledge. Therefore, the creation of humanity doesn't take place. Out of enlightened samskar may rise the culture. It would not be infected with inequality and discrimination. The specimen of man would emerge out of periphery of culture in a way that it would be shining sun of rights, and with the touch of conduct, the ritual light should be transmitted to countless generation of men. On the surface of planet, light clusters be tossed everywhere. Adultery, immortality, misdeeds, evils, sin, stigma would perish. In the lightful consciousness of rights, we want to find such a light. We want to check such a light. We want to see such a light. We want to experience such a light, live inside that light. Let new smoke break out again of speed and progress. Come on, let's seek out.
2: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
4: गीताई अध्याय दुसरा. आत्मज्ञान आणि समत्व बुद्धी किंवा सांख्य योग. संजय म्हणाला, असा तो करुणाग्रस्त घाबरा अश्रुगाळीत करीत असता खेद त्यास हे कृष्ण बोलिला. श्री भगवान म्हणाले, कोठोनी भलत्या वेळी सुचले पाप हे तुझ असे रुचे न थोरास याने दुष्कीर्ती दुर्गती. निर्वीर्य तू नको होऊ न शोभे हे मुळी तुझ भिकार दुबळी वृत्ती सोडूनी उठ तू कसा. अर्जुन म्हणाला, कसा रणांगणी झुंजू भीष्म द्रोणांविरुद्ध मी ह्यास बाण कसे मारू आम्हा हे पूजनीय की. न मारिता थोर गुरुस येथे भिक्षा हि मागुनी भले जगावे. हि तेच्छु हे ह्यास वधूनी भोग भोगू कसे भंगुर रक्त मिश्र. ह्यांचा चिभावा जय आमुचा की कशात कल्याण असे न जानो. मारुणी जानते जगनेन इच्छु झुंजावया तेची उभे समोर. दैन्याने ती मारिली वृत्ती माझी धर्माचे तो नाशिले ज्ञान मोहे. कैसे माझे श्रेय होईल सांगा पायान पाशी पातलो शिष्य भावे. मिळेल निष्कंटक राज्य येथे लाभेल इंद्रासन देव लोकी. शमेल त्यानेन तथापि शोक जो इंद्रियांते सुकवीत माझा. संजय म्हणाला, असे अर्जुन तो वीर ऋषिकेशास बोलुनी शेवटी मी न झुंजेची ह्या शब्दे स्तब्ध राहिला. मग त्यास ऋषिकेश जणो हसत बोलिला, करीत असता शोक दोन्ही सैन्यात तो तसा. श्री भगवान म्हणाले, करिसी भलता शोक वरी ज्ञान ही सांगसी. मेल्या जित्या विषी शोक ज्ञानवंत न जानती. मी तू आणिक हे राजे न मागे नवतो कधी. तसेची सगळे आम्ही न पुढे ही नसू कधी. या देही बाल्य तारुण्य जरावा लाभते जशी. तसा लाभे नवा देह न डगे धीर तो तिथे. शीतोष्ण विषय स्पर्श सुख दुःखात घालिती. करी सहन तू सारे येती जाती अनित्यते. ह्यांची मात्रा न चालेची ज्या धीर पुरुषावरी. समदेखे सुखे दुःखे मोक्ष लाभास योग्यतो. नसे मिथ्यास अस्तित्व नसे सत्यास नाशही. निवाडा देखिला संती ह्या दोहींचा अशा परी. जाने हे व्यापिले सर्व ते जान अविनाश तू. नाश त्या नित्य तत्वाचा कोणीही न करू शके। विनाशी देह हे सारे बोलिले त्यात शाश्वत, नित्य निस्सीम तो आत्मा अर्जुना झुंज ह्यास्तव। जो म्हणे मारितो आत्मा आणि जो मरतो म्हणे, दोघे न जानती काही न मारी न मरेची हा।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद देश विदेशों में घूमकर वहां के लोगों को भारत संबंधी ज्ञान बांट कर आए थे। उन्हें भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। इसी के साथ वे खुद भी विदेश से परिचित हुए थे। वहां के लोगों को आबोहवा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, लोकाचार, यहां तक के फैशन तक को जान लिया था। वे इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, सभी देशों के उद्भव तथा विकास के इतिहास से भी वे परिचित थे। विदेश से वापस आकर समय समय पर वे उनसे मिलने आने वालों से ये सभी बातें साझा करते थे। लोग भी विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होते थे।
1: आपने स्वामी जी द्वारा वर्णित पश्चिम और पूर्वी देशों में आहार, आचार विचार और लोकाचारों की बातें सुनी। अब हम पोशाक संबंधी उनकी धारणाएं सुनेंगे। उनका वर्णन करने का ढंग अत्यंत मनोहारी था। सभी विषयों को वे तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करते हैं।
2: अलग अलग देशों में कपड़े पहनने की अलग अलग प्रथा है और सभी देशों में पहनने ओढ़ने के ढंग के साथ कुछ न कुछ भद्रता का संपर्क अवश्य है। भले बुरे की पहचान भी अक्सर कपड़ों से ही की जाती है। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये बातें प्रचलित हैं। अब हमारे देश में भले आदमी नंगे बदन रास्ते में नहीं निकल सकते, भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में माथे पर बिना पगड़ी पहने कोई रास्ते में नहीं निकल सकता। यूरोप में दूसरे देशों की अपेक्षा फ्रांसीसी सब विषयों में आगे हैं। उनके भोजन आदि की सब नकल करते हैं। इस समय भी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में तरह तरह की पोशाकें मौजूद हैं, किंतु भले आदमी होने से ही या दो पैसा पास में होने से ही वो पोशाक गायब हो जाती है और फ्रांसीसी पोशाक का आविर्भाव हो जाता है।
0: उन्होंने यूरोप की पोशाकों का अच्छा खासा वर्णन किया है।
2: काबुली पैजामा पहनने वाले हॉलैंड के कृषक, घाघरा पहनने वाले ग्रीक, तिब्बती पोशाक पसंद करने वाले रूसी जो ही जेंटलमैन बने, त्यों ही उन्होंने फ्रांसीसी कोट पतलून धारण कर लिया। स्त्रियों की तो कुछ बात ही नहीं, पास में पैसा होते ही उन्हें तो

0: पेरिस का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी इस समय धनी देश समझे जाते हैं। उन सभी देशों की पोशाक एक तरह की है, वो फ्रांस की नकल है। परंतु आजकल पेरिस की अपेक्षा लंदन के आदमियों की पोशाक अधिक अच्छी होती है। इसी से पुरुषों की पोशाक लंदन मेड और स्त्रियों की पोशाकें पेरिस मेड होती हैं। जिनके पास पैसा है वे इन दोनों स्थानों की बनी पोशाकें बारहों मास व्यवहार करते हैं। अमेरिका में विदेशों से आई पोशाकों पर बहुत ज्यादा चुंगी ली जाती है, किंतु उतनी अधिक चुंगी देकर भी पेरिस और लंदन की पोशाक ही पहननी पड़ती है। ये काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस समय अमेरिका में कुबेर का प्रधान अड्डा जो है।
1: अब सुनिए प्राचीन भारतीय पहनावे की बात।
0: प्राचीन आर्य लोग धोती चादर पहनते थे। लड़ाई के समय क्षत्रियों में पायजामा और अंगा पहनने का चलन था, बाकी समय सभी धोती चादर, किंतु पगड़ी सभी पहनते थे। बहुत प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं। इस समय बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में केवल लंगोटी से ही शरीर को ढकने का काम चल जाता है, किंतु पगड़ी का पहनना अत्यावश्यक है। बौद्ध कालीन जो पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं उनमें स्त्रियां भी केवल लंगोटी ही पहने रहती हैं। बुद्ध के पिताजी लंगोटी लगाकर सिंहासन पर बैठे हैं, उसी प्रकार उनकी मां भी बैठी हैं। विशेषता केवल यही है कि पैर भर में पैजनी और हाथ भर में कड़ा है, पर पगड़ी जरूर है। धर्म सम्राट अशोक धोती पहन और गले में दुपट्टा डाल नंगे बदन एक डमरू के आकार वाले सिंहासन पर बैठकर नाच देखते थे। कमर से कितने ही चिथड़े लटकते थे फिर भी पगड़ी थी। जो कुछ होता था सब पगड़ी में, किंतु राज सामंत लोग चुस्त पायजामा और लंबी अचकन पहनते थे। सारथी नलराज ने इस प्रकार रथ चलाया कि राजा ऋतुपर्ण की चादर न जाने कहां उड़ गई और राजा ऋतुपर्ण नंगे बदन ही विवाह करने गए। धोती चादर आर्य लोगों की पुरानी पोशाक थी, इसलिए क्रिया कर्म के समय धोती चादर पहननी पड़ती है।
2: अब वे प्राचीन रोमन और ग्रीक पोशाकों का वर्णन करते हैं।
0: प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों की पोशाक थी धोती चादर। वहां एक प्रधान कपड़ा जो धोती और चादर दोनों का काम देता था तोगा कहलाता था। उसी का अपभ्रंश आज चोगा है, किंतु कभी कभी एक अंगा भी पहनते थे। लड़ाई के समय लोग पायजामा और अचकन पहनते थे। स्त्रियों का एक खूब लंबा चौड़ा चौकोर कपड़ा रहता था जो दो चादरों की लंबाई के बल सीकर और चौड़ाई की ओर खुला छोड़कर बनता था। उसके बीच में से दो बार बांधते हैं, एक बार छाती के नीचे और दूसरी बार पेट के नीचे। इसके बाद ऊपर खुले हुए उस कपड़े के दोनों सिरों को कंधों पर दो जगह बड़ी आलपिनों से अटका लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी कंबल पहनते हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर और सहज है, ऊपर एक चादर रहती है।
1: अब आता है सिले हुए कपड़ों का युग।
0: प्राचीन काल में केवल ईरानी ही काटकर बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे। जान पड़ता है शायद इसे उन लोगों ने चीनियों से सीखा था। चीनी लोग सभ्यता अर्थात भोग विलास सुख स्वच्छंदता के आदि गुरु हैं। अनादिकाल से चीनी टेबल पर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, खाने के लिए कितने यंत्र तंत्र रखते हैं, कई प्रकार की सिली पोशाकें पहनते हैं जिनमें पायजामा टोपी और टोप आदि होते हैं।
2: स्वामी जी से हमें पता चलता है ये पोशाकें कैसे एक देश से चलकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। फिर जलवायु के साथ पोशाक का संबंध भी उन्होंने बखूबी समझाया।
0: सिकंदर शाह ने ईरान को जीता, उन्होंने धोती चादर छोड़कर पायजामा पहनना आरंभ कर दिया। इससे उनकी स्वदेशी सेना इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह जैसा हो गया, किंतु सिकंदर ने कुछ परवाह न कर पायजामों का प्रचार कर ही दिया। गर्म देशों में कपड़े की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, लंगोटी से ही लज्जा निवारण हो जाती है, बाकी सब तो शोभा मात्र हैं। ठंडे देशों में सदा लोग शीत से पीड़ित होकर अस्थिर रहते हैं। असभ्य अवस्था में वे जानवरों की खाल पहना करते थे, क्रमशः कंबल पहनने लगे और फिर कपड़ों की बारी आई। वे कई प्रकार के होने लगे। इसके बाद नंगे बदन गहना पहनने से ठंड के कारण मृत्यु तो हो सकती थी, इसलिए यह अलंकार प्रियता कपड़ों में जा छिपी। जिस प्रकार हमारे देश में गहनों का फैशन बदलता है, उसी प्रकार इन लोगों के कपड़ों का फैशन भी घड़ी घड़ी बदलता रहता है।
1: प्राच्य और पाश्चात्य में सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, पहनने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है, स्वामी जी ने कहा।
0: इसलिए ठंडे देशों में बिना सर्वांग कपड़े से ढके किसी के सामने निकलना असभ्यता है। खासकर विलायत में ठीक ठीक पोशाक पहने बिना घर के बाहर जाया ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों का पांव दिखाई पड़ना लज्जा की बात है, किंतु गला और वक्ष का कुछ हिस्सा भले ही खुला रह जाए। हमारे देश में मुंह दिखाना बड़ी लज्जा की बात है, किंतु घूंघट काढ़ने में साड़ी चाहे पीठ से हट जाए तो कुछ हर्ज नहीं। राजपूताना और हिमालय की स्त्रियां मुंह ढाके रहती हैं, चाहे पेट और पीठ भले ही दिख जाए।
2: अब चीनियों के बारे में एक मजेदार कहानी।
0: एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इस लज्जा के संबंध में बड़े अद्भुत उदाहरण देखने में आते हैं। किसी किसी विषय में बहुत ज्यादा लज्जा की जाती है, पर उसकी अपेक्षा अधिक लज्जा वाले विषयों में नाम मात्र की भी लज्जा नहीं की जाती। चीन में स्त्री पुरुष सभी सदा सिर से पैर तक ढके रहते हैं। वहां बौद्ध मतावलंबी नीति में बड़े कुशल हैं। खराब बातें या चाल चलन होने से फौरन सजा दी जाती है। ईसाई पादरियों ने वहां जाकर चीनी भाषा में बाइबल छपवा डाला। उनको पढ़कर चीनी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने चीन में बाइबल के प्रचार को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, यह किसी तरह भी यहां नहीं चलाई जा सकती। इसके ऊपर ईसाई पादरी स्त्रियों का सायंकालीन पोशाक पहनना और भी आपत्तिजनक था। साधारण बुद्धि वाले चीन निवासियों ने कहा, सर्वनाश, इस पुस्तक को पढ़कर हमारे लड़के खराब हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए चीनियों को ईसाइयों पर बहुत क्रोध आ गया। नहीं तो चीनी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करते। सुनते हैं कि पादरियों ने फिर बाइबल छपवाया है, किंतु इससे चीनी लोगों को और भी संदेह हो गया। फिर पाश्चात्य देशों के विभिन्न प्रदेशों में लज्जा घृणा आदि के विभिन्न प्रकार हैं। अंग्रेजों और अमेरिका वालों के लिए वे एक प्रकार के हैं, फ्रांसीसियों के लिए वे एक दूसरी तरह के और जर्मनी लोगों के लिए वे तीसरी तरह के हैं। रूसी और तिब्बती लोगों की बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, किंतु तुर्कों का अपना ही रस्म रिवाज है।
2: स्वामी जी हमेशा स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मां के प्रति उनकी श्रद्धा सभी को मालूम है। वे शक्ति के उपासक भी थे और ईश्वर उनके लिए मातृ रूप में शक्ति ही थी।
1: वे जब यूरोप गए और वहां के लोगों को मां यानी मदर मेरी की पूजा और भक्ति करते देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पूजा पद्धति के साथ हमारी शक्ति पूजा की तुलना भी की है।
0: यूरोप में प्रोटेस्टेंट तो नगण्य है, धर्म तो कैथलिकों का ही है। उस धर्म में जिहोवा, ईसु और त्रिमूर्ति आदि भी दब गए हैं। सबका आसन मां ने ग्रहण किया है, ईसु को गोद में लिए मां। लाखों स्थानों में, लाखों किस्म से, लाखों रुपयों में, बड़े मकानों में, मंदिरों में, सड़कों में, फूस की झोपड़ी में, सब कहीं बस मां की ही ध्वनि है। बादशाह मां पुकारता है, सेनापति मां पुकारता है, हाथ में झंडा लिए सैनिक पुकारता है मां, जहाज पर मल्लाह पुकारता है मां, रास्ते के कोने में पड़ा हुआ भिखारी पुकारता है मां, धन्य मेरी, धन्य मेरी, धन्य मेरी। दिन रात यही ध्वनि उठती है।
2: हम भी शक्ति पूजा करते हैं, पर स्वामी जी ने देखा पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हम सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, घर की देवियों को सम्मान नहीं देते।
0: इसके बाद स्त्री पूजा है। ये शक्ति पूजा केवल काम वासनामय नहीं है, ये शक्ति पूजा कुमारी सधवा पूजा है, जैसी हमारे देश में काशी, कालीघाट आदि तीर्थ स्थानों में होती है। ये काल्पनिक नहीं, वास्तविक शक्ति पूजा है। किंतु हम लोगों की पूजा इन तीर्थ स्थानों में ही होती है, और केवल क्षण भर के लिए, पर इन लोगों की पूजा दिन रात बारह महीने चलती है। पहले स्त्रियों का आसन होता है, कपड़ा, गहना, भोजन, उच्च स्थान, आदर और खातिर पहले स्त्रियों की। उच्च कुल की और रूपवती युवतियों की तो बात ही क्या है। ये शक्ति पूजा प्रत्येक स्त्री की पूजा है, चाहे परिचित हो या अपरिचित। इस शक्ति पूजा को पहले पहल यूरोप में मूर लोगों ने आरंभ किया था। मूर मुसलमान और अरब जाति के मिश्रित हैं। जिस समय उन लोगों ने स्पेन को जीता था, उस समय उन्होंने 8 शताब्दियों तक राज्य किया था। उसी समय यह शक्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय सभ्यता का उन्मेष हुआ और शक्ति पूजा का आविर्भाव। कुछ समय के अनंतर मूर लोग इस शक्ति पूजा को भूल गए, इसलिए वे शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। वे स्थानच्युत होकर अफ्रीका के एक कोने में असभ्यावस्था में रहने लगे, और उस शक्ति का संचार हुआ यूरोप में। मुसलमानों को छोड़कर मां ईसाइयों के घर जा विराजी।

0: विनोबा की माँ। विनिया की स्मृति में बसी माँ विनिया की माँ रखुमाई देखने में सुंदर थी। गोरा वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुघर शरीर, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वे चतुर थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनमें भक्ति और वैराग्य की भावना भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गहने तो बहुत पहनती ही नहीं थी, कपड़ों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं रखती थी। रोज बड़े तड़के उठकर चक्की पीसती और संतों के पद अभंग गुनगुनाया करती। भक्ति के भजन गाने में वे इतनी तन्मय हो जाती थी कि कभी कभी तो दाल सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती या दोबारा डाल देती। ईश्वर पर अडिग श्रद्धा, कर्तव्य परायणता, प्रभु भक्ति के साथ साथ संसार के प्रति जल कमलवत अनासक्ति, ये उनके मुख्य गुण थे। विनोबा का जीवन बनाने में माँ की बड़ी महत्वपूर्ण देन है। विनोबा की आंखों में से आज भी माँ की याद आते ही आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे आंसू नहीं है, वे है माँ के चरणों में उसके अनंत उपकारों का अभिवादन। माँ के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: मुझ पर जो संस्कार हैं वो माँ के हैं, जिसके लिए दूसरी उपमा नहीं है। मुझे अनुभव से भरे बहुत से ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं और सत्संगति भी प्राप्त हुई है। उन सबको तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पलड़े में मुझे जो ये साक्षात भक्ति की शिक्षा मिली, उस दर्शन को रखकर तौलता हूँ तो दर्शन का वजन बाकी सब चीज़ों से बढ़ जाता है। मैं माँ का बेटा हूँ। होते हैं कुछ बच्चे माँ के, कुछ पिता के, कुछ दादा के।

0: वैसे ही मैं माँ का, यही मेरी सही पहचान है। अर्थात मेरे जीवन पर माँ का जितना परिणाम हुआ है उतना किसी और का नहीं। उसने लगाई हुई आदतें, उसने दिखाई हुई दिशा, उसने बताई हुई बातें, इन सब का इतना उपयोग होता है उतना किसी भी बात का नहीं होता। स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी वैसा ही बना। मैं हमेशा स्त्रियों को मात्र दृष्टि से ही देखता आया हूं। गीता का अनुवाद मैंने किया और उसे गीताई नाम दिया। संसार में कहीं भी आश्रय अगर ना भी मिले, परंतु माँ के आंचल में आश्रय सदैव ही मिलता है। माँ परम भक्त थी, घर के सभी लोगों को खिला पिलाकर, घर के सब कामों को निपटाकर, स्वयं कुछ ना खाते हुए भगवान के सामने बैठकर उनकी विधिवत पूजा करती थी। और पूजा समाप्त होने पर जब वो भगवान को प्रणाम करती थी, तब उसके भक्त हृदय के दर्शन होते थे। प्रणाम करने के बाद अपने दोनों कान पकड़कर कहती थी,
1: हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे अपराध क्षमा कर।

0: ऐसा कहते कहते आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। इस पर विनोबा कहते हैं,
1: मन उसका ईश्वर से सीधा संबंध हो, रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी जैसे विशेष दिन हमारे भी आंखों से आंसू आते थे। वो विशेष दिन होता है, वातावरण श्रद्धा भाव वाला हो जाता है, मूर्ति सामने होती है, उसे देखकर अश्रुधारा का बहना स्वाभाविक है। किंतु हर दिन की पूजा में इस प्रकार अश्रुओं का बहना मैंने देखा है और ये भक्ति के अलावा संभव ही नहीं हो सकता। मां रात को सबके बाद सोती और तड़के भोर के समय सबसे पहले जागती थी। बड़े तड़के चक्की पर आटा पीसते हुए मधुर भजनों को गाती थी। हम बच्चों को उसके कारण कितना ज्ञान मिला वो याद कर आंखें आज भर जाती हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये तीनों इस तड़के की पिसाई में एक रूप हो जाते थे। माँ के वे भोर के आटा पिसाई के वक्त गाए भजन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: विनोबा जी की मां सर्व सामान्य संस्कार कार्य में लीन थी। दिन भर काम करती, उनका सारा ध्यान ईश्वर भाव से भरा रहता था। वो सांसारिक थी, परंतु उसके हृदय में, उसके वाणी में कभी सांसारिक बातें नहीं थी। उनके मुख से भी कटु शब्द सुना नहीं। सवेरे उठने के साथ ही उनका ईश्वर नाम स्मरण शुरू होता था। आटा पीसने बैठती तो ईश्वर का भजन गाती। जो भजन गाती वे सब ईश्वर के होते और वे उतने ही प्रेम और तन्मय भक्ति से गाती थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर थी। उसकी विशेषता ये थी कि वे बहुत तन्मयता से गाती थी। विनोबा जी ने एक दिन माँ से कहा,
1: माँ रोज नया भजन गाओ, कल का आज नहीं, आज का कल नहीं। ये कार्यक्रम तकरीबन 6 महीने चला और माँ ने रोज नया भजन सुनाया। इतने भजन उसे मौखिक याद थे। वो कर्नाटक की थी, उनका मायका कर्नाटक का था, इसकी वजह से उन्हें कन्नड़ कर्नाटकी भजन भी आते थे। पुरंदर दास का भजन वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी, जिसका अर्थ था, मुझे भी कसम है भगवान, तुझे भी कसम है और हम दोनों भक्तों की कसम है, तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाऊं तो मुझे कसम, और अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हें कसम। उनका दूसरा मराठी भजन भी मुझे खूब याद है।
0: विनोबा जी की माँ स्नान, रसोई इत्यादि काम जब करती थी तो वो भजन गुनगुनाते हुए कामों में तल्लीन हो जाया करती थी। परिणाम ये कि वो या तो रसोई में नमक डालना भूल जाती या कभी कभी रसोई में 2 बार नमक डाल देती। वे सबको खिलाकर अंत में भगवान की पूजा करके भोजन करती थी और विनोबा जी सबसे पहले भोजन किया करते थे, परंतु भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं रहता था। जो थाली में परोसा, जो सामने आया उसे खाते थे और निकल जाते थे। उन्हें नमक का कम या अधिक होना पता ही नहीं चलता था। जब पिताजी भोजन को बैठते तो तुरंत कहते,
2: अरे कितना ज्यादा नमक डाल दिया है।
3: ठीक ही होगा, विनय तो भोजन करके गया, कुछ बोला नहीं।
2: अरे तेरे विनय को कुछ विज्ञान मालूम ही नहीं।
1: माँ शाम को जब मुझसे पूछती सब्जी में नमक ज्यादा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैं सीधा बोल देता, आप ही क्यों नहीं चख लेती पहले, थोड़ा सा चखना चाहिए ना।
0: परंतु भगवान की पूजा करने से पहले खाना उन्हें पसंद नहीं था। माँ पिता का बहुत आदर करती थी, परंतु विनोबा जी को वो विशेष मानती थी। एक बार माँ ने चावल के 1 लाख दाने ईश्वर को समर्पित करने का संकल्प किया। रोज चावल गिनने का कार्यक्रम चला। भगवान के चरणों में अक्षत चावल ही चढ़ा सकते हैं, इसीलिए खंडित चावल को अलग करते जाना ये उनका नित्य क्रम बन गया। पिता थे वैज्ञानिक, माँ को रोज ये चावल गिनने का कार्यक्रम करते देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा,
2: अरे यह तुम क्या एक एक दाना गिनती हो, 1 तोला चावल तोल कर उसमें कितने चावल है यह गिन लो और फिर हिसाब करके लाख चावल कर लो तो बस है। उसमें 1/2 तोला चावल अधिक डाल देना ताकि कम पड़ने का डर ही न रहे, थोड़ा ज्यादा रहे तो ठीक ही है।
0: माँ पिताजी को जवाब नहीं दे पाई, परंतु उनकी बात से वो सहमत नहीं हो सकी। विनू जब बाहर से लौटा तब माँ ने उससे पूछा,
3: विनया यह लाख चावल गिन गिन कर अर्पण करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तो बता।
4: मैं कहता था,
1: तुम जो एक एक दाना गिनकर ईश्वर को चढ़ाती हो वो गणित का काम नहीं, वो तो भक्ति है। दाने गिनते समय ईश्वर चरणों में जो तद्रूपता सधती है, भगवान का जो स्मरण होता है, उसी का तो महत्व है। तराजू में तौल लेने से ये चीज थोड़े ही सधने वाली है।
0: माँ का समाधान हो गया। उस रात पिताजी को भी निरुत्तर कर देने वाला जवाब मिल गया। अपनी ओर से 100% पुरुषार्थ और भक्ति की अखंड धारा बहाते हुए भी आखिरी विश्वास माँ का ईश्वर की चाह पर था। माँ रोज रात को दूध में जोरन डालते समय परमेश्वर का नाम लेती। एक बार विनोबा ने पूछा,
1: माँ दही जमाने में भी भगवान लाने की क्या जरूरत है।
3: बेटा हमने अपनी ओर से भले पूरी तैयारी कर ली हो, फिर भी दही तो तभी जमेगा जब भगवान की कृपा होगी, इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ।
0: मनुष्य का यत्न और ईश्वर की कृपा। नागपंचमी का दिन आता, मां विनया को नाग देवता का चित्र बनाने के लिए कहती। विनु कुमकुम का नाग बना देता, परंतु वो उतना अच्छा न बन पाता। तो विनु कहता,
1: मां बाजार में सुंदर चित्र मिलता है।
3: सुंदर हो तो भी वह निकम्मा है, वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपने बेटे के हाथ से खींचा हुआ चित्र चाहिए।
0: उस माँ का विनोबा पर बहुत बड़ा उपकार है, जिसने उन्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, रात रात भर जागकर बीमारी में सुश्रुषा की, किंतु मानव आचार धर्म की शिक्षा देकर सबसे बड़ा उपकार किया। इस संदर्भ में विनोबा जी बताते हैं,
1: माँ ने बचपन में मुझसे तुलसी को जल चढ़ाने का नियम करवा लिया था। एक बार जब मैं नहाकर खाना खाने बैठा तो माँ ने सवाल किया, तुलसी को जल चढ़ाया? मैंने कहा नहीं। तुरंत बोली, पहले जल चढ़ा कर आओ, फिर तुम्हें खाना देती हूँ।
0: गागोदे के घर के आंगन में कटहल का एक पेड़ था। हरे भरे पेड़ की पत्तियों में जब से फूल बैठने लगे थे, तभी से घर के बच्चे मीठे फल खाने के स्वप्न देखना शुरू करते थे। जब शाखाओं पर छोटे छोटे फल दिखने लग जाते, तब से ही सब फल पकने की राह देखते रहते। रोज माँ से पूछते कि क्या अब ये फल उतारने लायक हो गया है। यो कहते कहते वह दिन आ जाता जब फल उतारने लायक हो जाता। जब उसके फल तैयार हो जाते तो विनय सहित सब बच्चे अत्यंत उत्साहित होकर इकट्ठे हो जाते। कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई हाथ फैलाकर खड़ा रहता, कोई घर में थाली और चाकू लाने दौड़ता। इस तरह बच्चों की दुनिया में हलचल मच जाती। बड़े उत्साह के साथ फल उतारा जाता। सब बच्चों को इर्द गिर्द बैठा कर फल काटा जाता था और फिर सब में बांटे जाने का क्षण आते ही सबके मुंह में पानी भर आता था। इतने में माँ अंदर से प्रकट हो जाती थी। वे कहती थी,
3: ठहरो बच्चों, यह फल इस तरह खाया नहीं जाता, क्योंकि इस ऋतु का यह पहला फल है, इसे बांटना होता है, बचे तो खा सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग देव बनना पसंद करोगे कि राक्षस?
4: कैसा बेतु का सवाल है अम्मा का, भला राक्षस बनना कौन पसंद करेगा? निसंशय हम देव बनेंगे।
5: हम देव बनेंगे।
3: तो तुम जानते हो देव कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं?
5: जो स्वर्ग में रहते हैं वे देव, जो नर्क में रहते हैं वे राक्षस।
3: नहीं नहीं, देव और राक्षस यही इसी पृथ्वी पर होते हैं। मानव से ये दोनों बनते हैं, जो देता है वह देव बनता है और जो रखता है वह राक्षस बनता है। बोलो बच्चों, तुम क्या बनोगे, देव या राक्षस?
5: हम देव बनेंगे, देव बनेंगे, देव बनेंगे।
3: तब फिर यह फल सबको देकर खाओगे ना?
5: जरूर जरूर।
0: और फिर एक एक टुकड़ा लेकर बच्चे पड़ोस में बांटने निकल पड़ते। खुश होकर सब में बांटते हुए कहते, लीजिए ये हमारे कटहल के पहले फल का प्रसाद। और फिर सब लोगों में बांटकर जो कुछ थोड़े इन्हें गिने टुकड़े बच जाते, उसे भाई बहन आपस में बांट लेते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में चबाते हुए बच्चों की कोमल आंखों में देवत्व की नई झलक दिखाई पड़ती। बांट कर खाओ, माँ के इस सूत्र संस्कार ने पुत्र के जीवन में एक नई जान भर दी। अपने पड़ोस में कभी कोई स्त्री बीमार पड़ती तो माँ सेवा के लिए दौड़ जाती। कभी आवश्यकता हुई तो अपने घर का खाना पकाकर उसके घर जाकर खाना पका आती। ये देखकर छोटे से विनायक को अचरज लगता। वो माँ से पूछ बैठता था,
1: माँ तुम बड़ी स्वार्थी दिखती हो, अपने घर की रसोई पहले बनाती हो फिर पड़ोसी की, ऐसा क्यों, इतना स्वार्थ क्यों?
3: विनया तू तो बड़ा मूर्ख है रे, यदि उनकी रसोई पहले बना लूं तो उनको फिर ठंडा ही खाना पड़ेगा। पहले अपनी बनाकर फिर उनकी बनाओ तो उनको गरम गरम खाना मिलेगा, यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है।
0: बचपन में विनु को भूत का बहुत डर लगता था। माँ विनया को समझाती थी कि ये भूत वूत कोरी कल्पना है, परमेश्वर के भक्तों को भूत कभी नहीं सताता, राम नाम जपो, सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। माँ ने इतना कहा तो विनया का डर भाग गया। माँ ने कहा था कि अगर भूत दिखे तो प्रभु का नाम लो और लालटेन लेकर देखो। माँ पर श्रद्धा थी तो वो डर भाग गया। एक दिन की कहानी विनोबा खुद सुनाते हुए कहते हैं,
1: एक बार रात को हम अपनी कोठरी में टहल रहे थे, एक बाजू दिया था तो दीवार पर अपनी ही बड़ी बड़ी छाया दिखती थी। मैं घबरा गया, इतना बड़ा आदमी खड़ा है, इतना लंबा आदमी कभी देखा नहीं। तुरंत दौड़कर माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरा गुलाम है, तू जैसी आज्ञा करेगा वैसा उसे करना होगा, तू बैठेगा तो वो बैठेगा, तू खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा। मैंने सोचा कि देखूं सही है क्या, तब मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया, मैं खड़ा रहा, वो भी खड़ा हो गया, मैं चलने लगा, वो भी चलने लगा, मैं लेट गया, वो भी लेट गया। फिर मेरे ध्यान में आया, ये तो अपना गुलाम है। इस तरह से मेरा भूत का डर माँ की श्रद्धा से गया और छाया का डर माँ ने बुद्धि से निकाला।
0: दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाला विनोबा जी के दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक मोटा तगड़ा भिखारी भीख मांगने आया। विनोबा की माँ उसे भिक्षा देने लगी तो विनोबा जी ने माँ से कहा,
1: माँ ये तो मोटा तगड़ा आदमी दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे लोगों को भीख देते रहे तो देश में आलस बढ़ जाएगा, अपात्र को दान दिया गया तो दान देने वाले का भी अकल्याण होता है।
3: विन्या, पात्र अपात्र की परीक्षा करने वाले हम कौन? दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप मानकर अपनी हैसियत के अनुसार उसे देते रहना, इतना ही हमारा काम है। उसकी परीक्षा लेने वाली मैं कौन?
0: पिताजी का स्वभाव था कि वे किसी न किसी जरूरतमंद को अपने घर पर रखते थे। उन दिनों एक गरीब विद्यार्थी उनके घर पर रहता था। घर में कभी कुछ ठंडा खाना बच जाए तो माँ खुद खा लेती थी, या ज्यादा हो तो अपने विन्या को देती थी। उस विद्यार्थी को तो वो हमेशा ताजी रोटी परोसती थी, कभी बासी नहीं खिलाती थी। विन्या ये तमाशा रोज देखता था। एक दिन उन्होंने माँ से मजाक में पूछा,
1: माँ तू तो हमें कहती है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु तेरा भेदभाव अभी तक गया नहीं। देख उस लड़के को तू ठंडा खाना कभी नहीं परोसती और मुझे परोसती रहती है, इतना फर्क तो तू भी करती है ना?
3: बात सही है बेटा, अभी मुझसे तेरे में और दूसरे में भेद हो जाता है। यह मुझ में तेरी आसक्ति है, मेरे हृदय में तेरे लिए पक्षपात है। तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है जबकि वह लड़का मुझे भगवत स्वरूप दिखे, परंतु आसक्ति के कारण तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है। जिस दिन भी तू मुझे भगवत स्वरूप दिख पड़ेगा उस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा बेटा।
0: महान पुत्र की महान माता का भेदभाव भी कैसा भव्य है। पुत्र के प्रति पुत्र भावना, पर के प्रति भगवत भावना। इसका एक और उदाहरण देते हुए विनोबा जी कहते हैं,
1: एक बार मेरे हाथ में डंडा था और मैं उस डंडे से सामने वाले खंभे को मार रहा था। माँ ने मुझे रोका और बोली, किस लिए उसे मार रहे हो, खंभे में भी ईश्वर का वास होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। मैंने अपना हाथ रोका, खंभे को बिना वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये तो भावना है, ये यहाँ की हवा में समाई है। सभी वस्तुओं की ओर भगवत भावना से देखना, यह शिक्षा बचपन में माँ से मिली।